0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये तुम्हारे लिए एक टैरो डेक। मैं जानता हूँ कि तुम सालों से टैरो पढ़ रही हो, बट आई थॉट ये एक अनयूजुअल डेक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दिस इज अ प्रेजेंट आई गॉट ऑन अ फर्स्ट डेट विद अ गाय हु आई मेट ऑन अ डेटिंग ऐप। हमने पिछले 2-3 हफ्ते काफी सारी बातें की एंड फाइनली वी मेट लास्ट नाइट। और सबसे पहले मिलते ही उसने अपने बैग में से ये खूबसूरत सा अमेजिंग टैरो सेट निकाला, विच ही हैड ऑर्डर्ड ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले। एंड ही वाज लाइक, मैं जानता था हमारी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू दैट यू रियली लाइक रीडिंग टैरो, एंड आई थॉट कि पहली बार मिल रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग लेकर आता हूँ, समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, ब्रिंग योर हार्ट सम जॉय। एंड ट्रस्ट मी, ये पहली बार है इन माई लाइफ वेयर आई थॉट टू माई सेल्फ कि वेदर और नॉट आई एंड अप डेटिंग दिस गाय, ये जिंदगी भर मेरा दोस्त जरूर रहेगा। और इसकी वजह से आपके लिए प्रो टिप ये है, द नेक्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग अ फर्स्ट डेट, छोटा सा ही सही, मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रेजेंट फॉर द पर्सन दैट यू आर मीटिंग, बिकॉज उसका इम्पैक्ट ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू लिव थ्रू, वेदर यू आर गिविंग इट और रिसीविंग इट, टू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज। गिफ्ट्स की तो यार बात ही कुछ और है। ऑन दैट नोट, व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल गिफ्ट जो जिंदगी में आज तक आपको कभी मिला है? एंड टू टेल मी अबाउट इट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la.
2: ¡Gramba la!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¡Murga!
4: Hello,
5: Mr. Gotham.
4: Sir,
5: may I actually answer the request kar raha hai. So aap suna aap wo singing, winging sikhate hai sir. To sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na wo sir thode different hote hain.
4: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
5: Pehle mohalle mein mere snake nikla tha. To snake ka hi ghus gaya tha to mere ko pehle wale bolte hain ki bhai aaja tu aaja snake nikal de. Sir, main aapko main peshkash kar raha hu. Sir, har tarah ke gaane gha leta hu. Lekin meri speciality hai snake mein. Aur nagin kya hai sir, nagina फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
4: सर कुछ गा के सुनाई
5: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
4: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ
5: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
4: कौन से गाने
5: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश करो तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
4: सुन ले बात
5: मेरी बात
4: हाँ सुन पहले बात
5: हाँ सर
4: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
5: सर बोल लिया
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते समझ गया ना तू बात
5: जी सर
4: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे
6: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: वेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इनएफिशिएंट वेरी कॉम्प्लेक्स
2: क्लमजी ओए
3: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन
1: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं यस यू हर्ड दैट राइट यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट अकाउंटिंग ऑपरेशंस या HR काम अनेक सॉफ्टवेयर एक Zoho One गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
9: तेरा क्या होगा कालिया
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
9: अब मिर्ची खा
11: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बहुत ही ज्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय मैम, कैसे आप?
1: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स सो स्कैरी. आई डोंट
2: सो ग्लैड आपने कॉल किया.
1: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे? बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
2: मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी. हम लोग जिम में मिले थे, हम लोगों की थोड़ी केमिस्ट्री बन गई, काफी टाइम बातें आते हुई, और मुझे लगा कि दैट शी इज सीरियस. कॉज उसने मुझसे 3-4 बार पूछा था, तुम कभी आगे रहोगे क्या? मैंने कहा हाँ. तो मैं थोड़ा सीरियस हो रहा था. हमारी जो इंस्टा पे चैट थी कुछ, वो पकड़ ली उसके फादर ने. तो नेक्स्ट डे शी वाज सो क्राइंग. मेरे को 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे. कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं. फिर जब बात हुई, हम लोग मिले, हम उसकी कार में थे, थोड़ा मोमेंट बन गया था, और सडनली वहाँ पे पुलिस आ गई थी. वो मतलब कोई आके ऐसे कार के आगे खड़ा हो गया कि बाहर आओ. और मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला, और मैं वो हमारे पीछे भागे हैं. और मैं बिना पहन के कार चला. सो दैट मोमेंट वाज सो एम्बैरेसिंग. अब मैं किसी को ऐसे बताता, मतलब मेरे फ्रेंड से कभी शेयर करता, तो एवरीवन इज लाइक यार वो तेरे से 5 साल बड़ी थी, यू आर जस्ट अ किड.
1: तो आप कितने साल के हो?
2: आई एम जस्ट 20 years old.
1: ओह यू आर 20 एंड शी इज 25, सो क्लियरली शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना?
2: या
1: मिस्ट्री कॉलर, डोंट यू थिंक मुझे आपको रोशिफाई कर देना चाहिए?
2: यस
1: देन यू गो माय डार्लिंग.
3: यू've been रोशिफाइड.
1: आपसे बात करके बहुत मजे आए. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. वी विल गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ఎస్బీఐ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
1: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, జీఐఏ సాలిటర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
2: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरु.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवे, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरे हिसाब से ना द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर दोज जिसमें एक कपल वर्कशॉप करते हैं. यू नो कि आदमी वर्क करता है और लड़की शॉप करती है. दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप रिलेशनशिप इज सुपर सक्सेसफुल. आई एम जस्ट किडिंग. बट आज मैंने सोचा कि आपसे पूछती हूँ कि इफ यू हैव एवर बीन इन अ रिलेशनशिप, आपके हिसाब से व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स अ रिलेशनशिप रियली वर्क. मेरे हिसाब से इट्स ग्रेट कम्युनिकेशन. छोटी सी मिसकम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग जस्ट गोज डाउन हिल. आई रिमेम्बर वेरी रिसेंटली मेरी बेस्टी के साथ ऐसे हुआ. शी वेंट विद हर बॉयफ्रेंड टू गोवा और उन दोनों की एक बहुत अच्छी कॉमन फ्रेंड थी. तो अब बॉयफ्रेंड डिसाइडेड टू गो स्विमिंग विद द अच्छी कॉमन फ्रेंड एंड माई बेस्टी वॉज लाइक कि नहीं यार मैं पीछे रुक कर किताब पढ़ती हूँ. एंड द बॉयफ्रेंड सेड कि हाँ ठीक है ओके ओके ओके. नाउ सोचो एक छोटी सी चीज पर्सपेक्टिव का डिफरेंस. बॉयफ्रेंड सोच रहा है कि मैं इसे वो करने दे रहा हूँ जो ये करना चाहती है, जबरदस्ती स्विमिंग नहीं लेके जा रहा. और मेरी बेस्टी को लग रहा है कि भाई ये अकेले स्विमिंग चला गया इसके साथ. आई होप दे बोथ ड्राउन एंड डाई. सो नाउ यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, राइट? तो आपके हिसाब से व्हाट इज इट दैट मेक्स अ रिलेशनशिप टिक? टेल मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पहले ही बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है.
2: रोशी के DM से
1: सानिया ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्विस्टेड मैसेज लिखकर भेजा एंड शी सेड मुझे इसका आंसर आप खुद ही बता दो. आई कांट टॉक अबाउट इट, आई स्टार्ट क्राइंग. द थिंग इज सानिया को एक बंदा मिला एंड दे बोथ हैव बीन डेटिंग फॉर 6 months. लेकिन वो जानती है कि अगले 2 महीने के बाद वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा. सानिया दिल्ली में खुश है अपनी नौकरी में. शी डजंट वांट टू रिलोकेट टू ऑस्ट्रेलिया. वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं ट्राई करना चाहते हैं बिकॉज शी इज लाइक हम दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई कर लिया है अपनी जिंदगी में पहले एंड वी नो दैट इट डजंट वर्क आउट. सो हमारा रिलेशनशिप एक जेन्युइन एक्सपायरेशन डेट के साथ आता है शी सेड. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है. द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी डेट पास आते जा रहा है वैसे वैसे आई फाइंड दैट आई एम फीलिंग सैडर एंड सैडर. एंड यूजुअली बिकॉज मुझे पता है कि वो जाने वाला है व्हेन वी आर आउट ऑन अ डेट, इवन देन आई एम फीलिंग काइंड ऑफ सैड. तो क्या करूं, 2 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लूं ताकि मुझे इससे बड़ा हार्ट ब्रेक ना हो, या मैं इस रिलेशनशिप में और 2 महीने रुक जाऊं सो दैट आई कैन एंजॉय व्हाट आई एम ऑलरेडी एंजॉयिंग विद दिस गाय. यू नो व्हाट बेब, है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपकी, बट द ट्रूथ इज कि छोटा हार्ट ब्रेक और बड़ा हार्ट ब्रेक कुछ नहीं होता. जब आपका दिल किसी के साथ इन्वॉल्व होता है और वो रिलेशनशिप किसी भी पॉइंट पर खत्म होता है, यू डू एंड अप ब्रेकिंग योर हार्ट. और क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सर्टन रिलेशनशिप बना लिया है, वो आप आज खत्म करो या 6 महीने के बाद खत्म करो या 2 साल के बाद, इट इज स्टिल गोइंग टू हर्ट यू द सेम वे. मैं ये भी जानती हूँ दैट टू से कि लिव इन द मोमेंट, एंजॉय कर लो अगले 2 महीने विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑनेस्टली टू आंसर योर क्वेश्चन, देर इज नो आंसर टू योर क्वेश्चन. आप जिस सिचुएशन में हो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू गाइज हैव बीन कॉन्शियस अबाउट चूजिंग दिस फॉर योर सेल्व. आपने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए जब तक इकट्ठे हैं तब तक इकट्ठे हैं. वंस ही डज लीव, आपकी जिंदगी में काफी हार्ट ब्रेक और वैक्यूम होगा, दैट इज ट्रू, बट ट्राई एंड मेक एज मैनी मेमोरीज एज यू कैन. एंड हु नोज, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाकर ही माइट ऑल्सो रियलाइज कि हम शायद इमेच्योर थे इन थिंकिंग दैट हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है. मे बी यू गाइज विल चेंज योर माइंड अबाउट इट. बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ स्मॉल वे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी ब्रेकअप कर दिया तो आपको तकलीफ कम होगी, तकलीफ आपको तब भी होगी. तो माई सजेशन इज वाइल यू टू आर टुगेदर मेक द मोस्ट ऑफ इट. और उसके बाद अगर आपको एक ब्रोशी की जरूरत हुई, मैं हूं ना आपके साथ एंड आई प्रॉमिस टू नेवर लीव यू नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड आई एम. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escava la buscava la sacaba la bala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3 अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटाख. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
4: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
8: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जेंडर स्टीरियोटाइप मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि लड़के नहीं रोते हैं लड़कियां रोती हैं, लड़के हग नहीं करते हैं लड़कियां कार्डल करती हैं. दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. एक्चुअली मेरी जिंदगी में तो उल्टा ही होता है. बंदे सबसे ज्यादा रोते हैं और बंदे सबसे ज्यादा कार्डल पार्डल करना चाहते हैं. एंड बंदे आर लाइक साइड हो जाना थोड़ा सा. और मेरी जिंदगी में अभी थ्रू इंस्टाग्राम एक ऐसी लड़की है जिसकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सिमिलर है. विद मी ऑन द लाइन इज शायरा. हाय बेब.
2: हाय रोची,
1: हाउ आर यू?
2: I am great. How are you?
1: I am very sexy as always. अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि हम दोनों इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे कि आपको नहीं लगता कि ये सच है कि ये एक स्टीरियोटाइप होता है कि लड़कियाँ ज्यादा इमो होती हैं, बंदे इमोशनल नहीं होते. But that's not really true.
2: मेरे रिलेशनशिप में तो बिल्कुल ही उल्टा है रोशी. मतलब I should be the guy in the relationship sometimes.
1: क्यों?
2: My मतलब ठीक है, यू लाइक बीइंग टची है ना थोड़ा बहुत एक टाइम के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू स्लीप, बिकॉज़ यू हैव लाइक आई हैव अ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल इन द डे, तो मुझे होता है कि रात को चलो ठीक है आराम से आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ है ना, आई जस्ट स्लीप आराम से. बट आई एम इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो माय गाय इज वेरी टची. मतलब हो गया सब कुछ, उसके बाद सोने लगे ना, तो सोने दो. बट देन ऑल्सो ही हैज टू हग पीछे से, एंड उसके बाद ऐसे like I don't like it, and I'm like nahi yaar please, but I don't even want to hurt his feelings. Theek hai chalo har banda alag alag hota hai,
1: correct.
2: So I am in a phase where I want to sleep but I cannot sleep because my guy is over me and I want to get rid of him. I don't know.
1: तो तूने कभी कोशिश नहीं की उसको ये कहने की कि मैं सड़क नहीं हूँ और तू बस नहीं है, तो प्लीज कैन यू स्टॉप ट्राइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ मी?
2: डायरेक्टली तो आई एम नॉट बीन लाइक आई एम समटाइम्स सेइंग कि भाई आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, तो ही लाइक आई एम वी आर डूइंग नथिंग नाउ वी जस्ट हगिंग, एंड आई एम लाइक वही तो नहीं चाहिए भैया.
1: अच्छा ठीक है, यू आर राइट. आई मीन यू कांट से एनीथिंग टू हिम बिकॉज़ यू विल एंड अप हर्टिंग हिज फीलिंग्स. आई हैव एन आइडिया फॉर यू. रातों की लातें होती हैं, समझे? सडनली अब आज रात से आपको बीमारी होने वाली है जिसमें आप रात को लातें मारते हो, या बेटर स्टिल अपने गोड़े मारते हो, यानी कि आपकी नीज इन द राइट प्लेस. उसके बाद उनको जब आपके बॉयफ्रेंड को समझ में आ जाएगा कि रात को आपको जूजित्सु करने की बीमारी है, वो आपसे 100 मील दूर सोएगा. लग गई ज्यादा तो क्या होगा, एट द मोस्ट थोड़े दिन एक्शन नहीं मिलेगा, बट आई एम श्योर आप उसके बिना जी सकते हो.
2: Definitely.
1: या फिर अगर आपको लाते नहीं मारनी है तो आप अपने हाथ भी चला सकते हो, जैसे कोनी लग गई मुंह पे उसके, या थप्पड़ लग गया ऐसे उड़ता हुआ.
2: कोई यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखती हूँ, कुछ ऐसे कैसे मार सकते हैं बिना हर्ट किए.
1: मैंने नहीं, एक्चुअली जब आपने कहा मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, मतलब मेरे को आदत है ये टाइप करने की कि फूड वीडियोस, ये आदत है टाइप करने की मेकअप ट्यूटोरियल्स, बट मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कोई ये टाइप करेगा, हाउ टू हिट समवन विदाउट हर्टिंग देम, एंड नोइंग यूट्यूब उस पर होगा एक ऐसा वीडियो. हाँ हाँ करो करो बिंदास करो. मैं तो कह रही हूँ अगर गलती से एक दो बार लग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है. गुस्सा ऑफिस की भड़ास
2: अपनी जगह है, गुस्सा.
1: कभी खुशी कभी गम, आपसे बात करके इतने मजे आ रहे मुझे. एज सून एज वी स्टॉप टॉकिंग मैं यूट्यूब पे जाके आपको पता क्या सर्च करने वाली हूँ.
2: मैं भी यही करने वाली, मैंने आपका पोल आउट स्पीकर पे लगा लिया, आई एम डूइंग दैट ओनली.
1: कमाल है लड़की तू शायरा, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. तथास्तु, मारो पीटो थोड़ा सा लेकिन प्यार से, बिकॉज वायलेंस इज नेवर गुड. और मैं बिल्कुल वायलेंस का प्रचार नहीं कर रही हूँ मेरे यार. और अगर आपकी भी जिंदगी में शायरा की तरह कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप एंड आई विल कॉल यू बैक ऑन इंस्टा या FB. मतलब आप मुझे हिट मी अप करना और मैं आपको फोन से वापस फोन करूंगी. नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: My bestie, वो drool कर रही है over a friend of hers जिसका अभी breakup हुआ है, and I was like, एक second babe, अगर तू चाहती भी है इसे date करना, you have to use something which is called like the post breakup dating trick, जो कि ये है कि तू इस बंदे को अपने साथ डेट पर लेकर जा और पहली डेट में सिर्फ उसके हार्ट ब्रेक के बारे में सुन कि कैसे उसको उस बंदी ने डंप कर दिया, कैसे उसका दिल टूट गया, याडा याडी याडा। फिर दूसरी डेट में उसे जाकर ये बता कि उसे इतना रोना नहीं चाहिए, बिकॉज वो इतना अट्रैक्टिव है, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। दैट वे ही विल स्टार्ट बिलीविंग कि यार एक्चुअली ये लड़की भी काफी क्यूट है। और तीसरी डेट में डू समथिंग दैट मेक श्योर कि आप फ्रेंड जोन नहीं होते। बाय द टाइम द फोर्थ डेट इज ऑन, कोई ना कोई सेक्सुअल केमिस्ट्री तो ऑन हो ही जाएगी पक्का। शी इज ऑन ऑलरेडी हर थर्ड डेट एंड शी इज सेइंग इट्स साउंडिंग लाइक हो सकता है दैट दीज गाइज माइट गेट टुगेदर। तो अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्रेकअप हो गया एंड यू हैव द हॉट्स फॉर हर और हिम, इससे पहले कि आप ये डेटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करो, व्हाई डोंट यू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड वी विल टॉक अबाउट इट फर्स्ट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिंदगी में कभी ऐसा था कि आपका दिमाग खराब हुआ वन इवनिंग एट 5 PM फॉर नो रियल रीजन एंड यू सब्सक्राइब ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक टू लाइक अ वेडिंग मैगजीन या फिर एक फैशन मैगजीन जिनका फेवरेट पास टाइम होता है कि रोज सुबह आपकी फीड में वो धड़ाधड़ ऐसे शादी के वीडियोज डालेंगे. यू नो लाइक टू रियली गुड लुकिंग पीपल गेटिंग मैरिड इन द फिलीपींस, इन बाली, इन थाईलैंड या फिर जयपुर एंड उदयपुर, वेयरिंग दिस लाइक रियली नाइस पिंक रीगल साड़ी एंड लाइक अ लॉट ऑफ पर्ल्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड you're like, एक सेकेंड, हु आर दीज पीपल हु आर डूइंग दिस एवरी सिंगल मंथ आफ्टर मंथ. यहां मुझे एक डिसेंट लॉन्डो नहीं मिल रहा है. मैं पिछले 6 साल से ढूंढ रही हूं और यहां लोगों को लोग मिल भी रहे हैं, वो शादी भी कर रहे हैं, वो अच्छे ज्वेल्स भी पहन रहे हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर की फोटोग्राफ भी चिपका रहे हैं. It just makes no sense to me. लेकिन अगर आप उन lucky लोगों में से हो who's found your Mr. or Miss right and you are super happy, you shouldn't be texting me. Just text that person, okay? And keep me out of it. But अगर जिंदगी में भासड़ है then hit me up. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. You can find me on the gram या Facebook. And while you do that, कहीं मत जाना जाना unless you're getting married. क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Milciu. Buscaba la buscaba la sacaba la
1: Burca,
0: burca, burca. La vieja la burca.
1: Milci burca.
2: Hello.
3: Hello, उसको वहां से मत उठाओ यार. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से. मत करो उसको वहां से. हेलो हेलो भाई साहब.
2: हाँ जी बोलो.
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
2: हाँ जी देते.
3: एक सेकंड होल्ड करना. उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे. मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार. ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको बता दूँ? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम.
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार. ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे. तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए. तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा
2: गिर गया.
3: सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको.
2: हाँ
3: सामान उठवा.
2: क्या कर रहा है
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार. आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ. सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है.
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा. हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं. मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं. आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बहुत ही ज्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय मैम, कैसे आप?
1: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स जस्ट सो स्कैरी. आई डोंट
2: सो ग्लैड आपने कॉल किया.
1: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते हैं. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे? बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
2: मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी. हम लोग जिम में मिले थे, हम लोगों की थोड़ी केमिस्ट्री बन गई, काफी टाइम बातें आते हुई, और मुझे लगा कि दैट शी इज सीरियस. कॉज उसने मुझसे 3-4 बार पूछा था, तुम कभी आगे रहोगे क्या? मैंने कहा हाँ. तो मैं थोड़ा सीरियस हो रहा था. हमारी जो इंस्टा पे चैट थी कुछ, वो पकड़ ली उसके फादर ने. तो नेक्स्ट डे शी वाज सो क्राइंग. मेरे को 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे. कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं. फिर जब बात हुई, हम लोग मिले, हम उसकी कार में थे, थोड़ा मोमेंट बन गया था, और सडनली वहां पे पुलिस आ गई थी. वो मतलब कोई आके आगे ऐसे कार के आगे खड़ा हो गया कि बाहर आओ. और मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला, और मैं वो हमारे पीछे भागे हैं. और मैं बिना बैंक के कार चला. सो दैट मोमेंट वाज सो एम्बैरेसिंग. अब मैं किसी को ऐसे बताता, मतलब मेरे फ्रेंड से कभी शेयर करता, तो एवरीवन इज लाइक यार वो तेरे से 5 साल बड़ी थी, यू आर जस्ट अ किड.
1: तो आप कितने साल के हो?
2: आई एम जस्ट 20 years old.
1: ओ यू आर 20 एंड शी इज 25, सो क्लियरली शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना?
2: Yeah.
1: मिस्ट्री कॉलर, डोंट यू थिंक मुझे आपको रोशिफाई कर देना चाहिए?
2: Yes.
1: देन यू गो माय डार्लिंग.
3: You've been रोशिफाइड.
1: आपसे बात करके बहुत मजे आए. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. वी विल गेट टॉकिंग, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी एग्जिस्टेंस की वजह से आपको लगता है कि जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा गुलजार है. अब फॉर इंस्टेंस देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन ऑफिस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसकी पता है खास बात क्या है, मुझे उसे बताना नहीं पड़ता है कि आज मेरा मूड कैसा है. मेरी आंखें देखता है और समझ जाता है कि आज मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मेरे दिमाग में कोई प्रेशर है, एंग्जाइटी है, और देखते ही विल नो व्हाट आई नीड. वो एक चॉकलेट आइसक्रीम है, एक गर्म चाय की प्याली है, एक अच्छा सा गाना है, या फिर बस जस्ट अब पैकअप कर और घर जा. और जिंदगी में अगर एक भी ऐसा दोस्त हो ना, यू नो दैट योर लाइफ इज मेड. शायद कहीं ना कहीं भगवान ने आपको स्पेशल वन चूज कर ही लिया है. और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है, आई रियली वॉन्ट टू नो दिस स्टोरी. यू नो वाई? क्योंकि हम जितनी ये प्यार की बातें करेंगे, इस दुनिया में हम प्यार को और मल्टीप्लाई ही करेंगे. एंड टू टेल मी योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक चीज जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी वो ये है कि जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath.
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है. सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधे शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. मिका सिंह दहिया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है, एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

बट जो उनका नया वाला गाना है इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशन, ओल्ड the women, small town characters. You will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look. Unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya hai aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Navela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8. Adnan Sami ki composition, Adnan Sami की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना
2: क्या बना
1: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय शिवानी।
3: हाय
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है। तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन मत काटना। शिवानी मेरी बात सुनो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Kohli goes down the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। दरअसल आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aapko सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना ना, तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वाज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अशकाय और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना नंबर 5। You are listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 5।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: नंबर 4।

0: करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए ही गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, Tera Chehra is one of those songs that nostalgia nahi balki ek pura zamana yaad aa jata hai. Adnan Sami ki awaaz mein, that was Tera Chehra on a cassette classic this week at RJ Kanak on Instagram par aao. And this is where gaane share karne ki baari aati hai. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनिका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है अर्ज किया है. कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर

0: ट्वेंटी टॉप टेन
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप टेन। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर आई टेक यू टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खाका का और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खाका ए अजनबी।

0: वन गाना नंबर 6 तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर रंग दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5 रोग लबे करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4 संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3 फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2
1: कायर जो थे वो शायर बने अब क्या क्या करें ये इश्क में
0: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan. Ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 1.

सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये लिखा है मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। थोड़ा सैड हो गया मामला, रोमांटिक वाला सुनते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। कैसर उल जाफरी ने ये लिखा है पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो मिस्टर गौतम,
4: कौन बोल रहे हैं
5: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
4: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
5: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: सर कुछ गा के सुनाइए।
5: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
4: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
5: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
4: कोंडा में कौन से गाने
5: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
4: क्या
5: सर?
4: मत
5: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
4: सुन ले बात,
5: मेरी बात
4: सुन, पहले बात सुन।
5: हाँ सर।
4: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
5: है सर, बोलिए।
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
5: जी सर।
4: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
6: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Split ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Jack.
2: Tera kya hoga, Kalia?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उमराव जान फिल्म बनने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी दिक्कतें। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत जीवन में क्या होती है? पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत थी इस फिल्म के बनने में। कितनी बार ऐसा हुआ कि फिल्म बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके फिल्म बना दी गई। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स में ना रेखा ने जो कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी पहनी है, वो उनकी खुद की है। चलिए, समवेयर इट पेड ऑफ, फिल्म को नेशनल अवार्ड्स मिल गए। और आपको मिल रही है यहाँ पे वही पुरानी दुरानी एक चीज, वो है ब्रेक। बट इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक, ऑफ कोर्स गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: घोड़ा चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर, एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, गा
1: एक चतुर नारे।

0: हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार सिर्फ एक अमेजिंग एक्टर ही नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंसान भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। दादा मुनि बहुत काइंड हार्टेड थे, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे फिल्म टेक्नीशियंस की उन्होंने मदद की है। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट भी फेमस है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टेक्नीशियन को चोट लग गई थी, तब दादा मुनि मेड श्योर कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद ही शूटिंग वापस से शुरू हो। अशोक कुमार साहब ने बहुत से नए टैलेंट को चांसेस दिए, उनके साथ काम किया, उनकी हेल्प की, उनको गाइडेंस दी, इंक्लूडिंग हिज यंगर ब्रदर्स अनूप कुमार एंड किशोर कुमार। पर उन भाइयों की फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो साहब चलती का नाम गाड़ी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: बाजू।

0: जी चला चला के झूम बाजू
1: बाजू चला के झूम
0: आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू
1: बाबू।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

जो प्यार से हर पल प्यार करे, वो शायर आशिक आवारा, मैं गंगा तट का बंजारा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लाइंस लिखी थी अनजान साहब ने, जिनका असली नाम लालजी पांडे था, जो बनारस के थे। और उनकी पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी कविताओं की कलेक्शन की एक बुक, जिसका नाम है गंगा तट का बंजारा, इसका लॉन्च हुआ था 1993 में और लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी में अनजान साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनके बहुत सुपरहिट गाने अनजान साहब ने लिखे हैं। लेकिन इतने हिट गाने लिखने के बाद भी अनजान साहब को एक मलाल रहा कि उनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। यार देखिए, वैसे कलाकार का काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन। थोड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो ऐसा फील करते थे, मतलब इतने सुपरहिट पे हिट गाने आप लिखो, अवार्ड भी नहीं दो, जान ले लो मतलब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

लाइफ में सोचते हैं क्या और क्या हो जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। 1987 की फिल्म इजाजत, इसमें ओरिजिनली नसीरुद्दीन शाह साहब के रोल के लिए संजीव कुमार को साइन किया गया था और अनुराधा पटेल वाले रोल के लिए स्मिता पाटिल को। लेकिन जब तक ये फिल्म बननी शुरू हुई ये दोनों एक्टर्स नहीं रहे, फिर नए सिरे से नए एक्टर्स को साइन किया गया। लाइफ और वक्त का कोई भरोसा नहीं है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट्स, सुनते हैं यहाँ पर मिर्ची पर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.
7: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

ये गाना है 1978 की फिल्म दिल से मिले दिल का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ ज्यादा याद रखने वाली ये फिल्म है नहीं, लेकिन इसमें जो एक्ट्रेस थी ना श्यामली, ये कुछ फिल्मों में आई थी, कुछ हॉरर फिल्मों में भी आई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए इनको किशोर कुमार ने रेकमेंड किया था। किशोर कुमार जिस बैंक के कस्टमर थे, उसी बैंक में श्यामली के फादर काम करते थे, तो किसी तरह से किशोर कुमार ने इन्हें देखा, इनसे मिले और इनको इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया। इसी बात पर किशोर कुमार का एक और गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: कादर खान साहब एक सिविल इंजीनियर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पढ़ाई के बाद उनकी जॉब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी, जहाँ से उन्हें एक महीने बाद निकाल दिया गया। हताश निराश होकर वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने ही कॉलेज की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, फकी साहब उनका नाम है, वो ऊपर जा रहे थे, मुझे देखा, अरे खान क्या सर मेरा जॉब छूट गया। तो ठीक है, इंजीनियर्स को, जॉब वालों को ऐसा होता है, तो ऐसा मुंह नहीं बनाने का। और सुन एक काम कर, एक टीचर 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला, वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए, तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूंगा सर। तो टीचर बन गया। अब 2 महीने के लिए टीचर बना, वो उन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर बना जिनमें मैं खुद फेल हुआ था, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत बोर सब्जेक्ट है सर, बहुत खुश्क, और वो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती है ऐसी, साल में 15, कोई बनाता नहीं था। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मजा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा, और सर ऐसा पढ़ाने लगा, 1 हफ्ते बाद मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया था।
0: शायद इसीलिए जिन रोल्स में ऐसे टीचिंग प्रीचिंग होती थी ना, कादर खान साहब बहुत अच्छे से निभाते थे। याद है मुकद्दर का सिकंदर में कैसे एक रोते हुए बच्चे को उन्होंने हंसना सिखाया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

द कल्ट क्लासिक आइकॉनिक फिल्म गाइड के गाने पहले हसरत जयपुरी साहब लिखने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर किसी गाने को लेकर उनका और डायरेक्टर विजय आनंद का कोई आर्गुमेंट हो गया, कोई लाइन विजय आनंद साहब को पसंद नहीं आई उनकी, और उस बात पे कुछ डिस्कशन हो गया जो आर्गुमेंट में बदल गया, और तब हसरत जयपुरी साहब ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनकी जगह पे फिर शैलेंद्र साहब को लाया गया और उन्होंने फिर इस फिल्म के गाने लिखे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

सो रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी तो शुरुआत में मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग लगी, लेकिन बाय द टाइम फिल्म एंडेड आई जस्ट लव द फिल्म। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म है 1978 की फिल्म नौकरी, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। सो ये 1978 वाली इज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, और अब तक तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्में मुझे कितनी पसंद है। इसके बारे में मुझे ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पता था, बट जब देखी तो पता चला कि वाह क्या सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट पे काफी फिल्में बन चुकी हैं, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी। सो बेसिकली इसमें राजेश खन्ना का जो किरदार है वो अपनी जिंदगी से तंग आके अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, और आफ्टर लाइफ में उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एहसास दिलाता है कि भाई तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। क्योंकि इस फिल्म को प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट किया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनरिलेटेबल, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, बट ओवरऑल द सब्जेक्ट इज वेरी नाइस। कभी कोई थॉटफुल फिलोसॉफिकल मूवी देखने का मूड हो तो ये वाली जरूर देखना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: birba, la burga. Milci, burga. Hello.
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
1: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Rani Jeans with Charu, only on

1969 की फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना का जो ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाला रगड लुक था ना, वो काफी पसंद किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये लुक कोई स्पेशली इस फिल्म के लिए नहीं उनका सोचा गया था, ये तो ऐसे इत्तफाकन हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे राजेश खन्ना इस फिल्म की और इत्तफाक नाम की फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे। उस फिल्म का जिस तरह का सब्जेक्ट था, इनका लुक वैसा होना था, ऐसा दाढ़ी वाला। तो दोनों फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे, दाढ़ी लिए फिर रहे थे, तो इसी से काम चला लिया गया। वैसे दो रास्ते में भी वो ऐसे हैरान परेशान से घूमते रहते हैं, तो उस तरह का लुक उनको सूट हो गया था। चलिए, आपको भी एक लुक बहुत सूट करता है, वो मुस्कान वाला लुक है। मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: लेट 60s में जब अस्तानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे, वीकडेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ वीकेंड्स में बॉम्बे जाते थे फिल्मों में काम ढूंढने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसी टू फ्रो में उनको ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके लिए उनको कितनी पेमेंट मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में अस्तानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, तू पुणे से आया है? हाँ सर। क्या किराया है? मैंने कहा डेक्कन क्वीन में आया। कितना? मैंने कहा 6 रुपए। 6 आना ना, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो उन्होंने बैठे नहीं थे। मैंने कहा नहीं सर, बहुत पता नहीं मुझे। अरे पता बुलाया प्रोडक्शन वाला, इधर आओ, डेक्कन क्वीन का पता करो, फर्स्ट क्लास कितने का है। गुड्डी का रोल 2 दिन का, उसके लिए मुझे देने से पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा सर 21 रुपीज दे दो। 21 रुपीज और जेब में लिफा डाल दिया। मैंने खोला ही नहीं, जाके जब ट्रेन चल पड़ी बाथरूम में जाके खोला तो 250 रुपए। 250 रुपए की कीमत थी और ऋषिकेश मुखर्जी दे रहे पैसे, वो तो लेते थे, देता कहाँ से। बट लकी, आई एम वेरी लकी।
0: वेल, यहाँ से शुरुआत हुई और इसके बाद तो आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ 12-13 फिल्मों में अस्तानी साहब ने काम किया होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

क्या ही माइंड ब्लोइंग गाना है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसमें मोहम्मद रफी साहब की तो मेन आवाज है, वो जो बच्चे वाली आवाज है वो आपको पता है ना, वो सुषमा श्रेष्ठ यानी कि पूर्णिमा श्रेष्ठ यानी कि 90s की वो जो पॉपुलर सिंगर पूर्णिमा है उनकी है। 70s में ये बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड सिंगर थी, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं, मतलब ज्यादातर जो बच्चों की आवाज आपने उस टाइम पे फिल्मों में सुनी है वो इन्हीं की थी, जैसे है ना बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार, अंदाज फिल्म का जो गाना है उसमें, फिर तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो वाला गाना जो है उसमें, ऐसे कई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची।

0: Merge.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Merge, Burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा,
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स पटाक. लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
1: सुन ले बात
2: मेरी, बात
1: सुन, पहले बात सुन.
2: हाँ सर.
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
2: रहा है. सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ए पगला,
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, शाम कनाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: का समय।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। ऑल्सो 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 10

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। एज अ पेरेंट, क्या बच्चों की जिद के आगे हमें हार मान लेना चाहिए?
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: सिस्टर, इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं भावनात्मक हेर फेर हिंदी में, लेकिन मुझे ये जानना है कि हमने अभी तक बात की है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे से बाहर निकलें, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी बच्चे ही आपको रियलाइज ही नहीं होता आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, ये आप मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं ऐसा नहीं करूंगा एक्सेट्रा, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए आपको एज अ पेरेंट?
3: हाँ, मना बच्चे कई बार करते हैं, आप देखे छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनको कोई चीज चाहिए ना, तो उनको भी पता होता है कि अगर हम रोएंगे चिल्लाएंगे चीखेंगे तो मिल जाएंगे, सो वो भी क्या कर रहे हैं आपको एक्चुअली इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, पर उसमें भी फर्म रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार उनके अनुसार कर दिया तो फिर वो बार बार आपके साथ ऐसा करेंगे, इसीलिए पेरेंटिंग में भी वो करना जो उनके लिए राइट है, पर अगेन हार्श नहीं होना, आखिर तो बच्चे ही है ना, आपको प्यार से समझाना है, 10 बार भी समझाना है, 20 बार भी समझाना है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं देनी है वो उनके नुकसान के लिए तो नहीं देनी है,
2: उसमें नेगोशिएट भी नहीं करना कि अच्छा 4 ले लो 6 मत लो,
3: नहीं, कोई नेगोशिएट नहीं करना है उसमें, कोई नेगोशिएशन नहीं होता, अगर वो चीज गलत है
2: तो गलत है,
3: सी डिपेंड करता है कि कभी कभी वो एक है वो गलत है, और एक है कि अभी वो आइसक्रीम है, अब आपने कुछ ऐसा बनाया कि हफ्ते में एक बार देते हैं, पर अगर आपने 2 बार भी दे दी तो कोई उसका इतना नुकसान नहीं है, इट इज नॉट सच अ बिग डील, सो वहाँ पर इट्स ओके अगर आप थोड़ा बहुत इतने हार्श नहीं होना होता।
2: दुनिया में जितने हेल्दी लोग जो ये मुहिम चला रखे हैं वो इस बात से बहुत नाराज होंगे कि आपने कहा कि 2 बार दे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो 1 बार भी नहीं देते।
3: नहीं, मैं समझती हूँ उसमें इतना हार्श होने की जरूरत नहीं होती है, पर कई चीजें रॉन्ग होती है,
2: वो उसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं,
3: उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगर कोई अनएथिकल चीज है, कोई इलीगल है,
2: तो
3: जिसमें उस बच्चे का फायदा है लेकिन किसी का नुकसान है,
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है अभिनव बिश्त से। वो लिखते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं कर पाता हूँ और हर काम को कल पर टाल देता हूँ, और सुबह उठ नहीं पाता, 11 बजे तक उठता हूँ, मैं क्या करूँ?
3: आप अगर हर बार ऐसा करें, पहले तो जो टाइम टेबल है वो अपनी कैपेसिटी से बनाए। सिर्फ टाइम टेबल नहीं बनाना होता, टाइम टेबल भी अपनी कैपेसिटी से बनाना होता है। दूसरा, रात से शुरू करें।
2: अच्छा,
3: जल्दी सोएं। आप कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लें और आप कितना भी प्लान कर लें, लेकिन अगर आप सोएंगे लेट और आप 11 बजे उठेंगे तो वो टाइम टेबल आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
2: मैं सोच रहा था आप क्या कह रही हैं, सुबह से शुरू होना चाहिए, रात से शुरू करें।
3: हम हमेशा सुबह से ही शुरू करते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर शुरुआत ठीक है तो अंत भी ठीक होगा। लेकिन अब धीरे धीरे हम रियलाइज कर रहे हैं कि शुरुआत भी तभी ठीक होगी
2: जब अंत भी सही हो,
3: जब वो पिछले दिन का अंत ठीक होगा। मतलब इफ यू डोंट स्लीप ऑन टाइम तो अगला दिन ठीक नहीं बीतता है। आप 11 उठेंगे तो 11 उठते ही आपका मन थोड़ा दुखी हो जाएगा,
2: क्या यार फिर लेट उठा मैं,
3: क्योंकि आपने जो भी प्लान किया था 9 to 11 में करने के लिए, 8 to 11 में आप पहले ही पीछे चले गए, तो उतना उमंग नहीं रहता ना। पहले ही मन कहने लगता है कैसे होगा, होगा नहीं होगा, आज फिर हो गया, तो मन को उमंग उत्साह नहीं मिलता। मन और थोड़ा सा उदास, निराश, दिल शिकस्त हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग ठीक होने के लिए पहले रात ठीक होना चाहिए। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें। 2-3 दिन भी अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल पाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। पहले तो जो हम हमेशा कहते हैं अचीवेबल गोल्स बनाएं।
2: सही बात है,
3: टाइम टेबल भी आप ऐसा बनाएं जो आपको लगता है आप अचीव कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको आप और इंक्रीज करते जाएं।
2: बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपको 11 बजे उठने की बजाय 11 बजे सोना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाएं और अचीवेबल गोल्स बनाएं, तो शायद इससे आपको बहुत सहूलियत होगी।
3: देखो, 6 घंटे की नींद तो हर एक को चाहिए ही। अगर आप बिल्कुल भी कोई प्रकार का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही। ग्रेजुअली अगर कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्लीप कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ उतना सोते हैं जितना शरीर को चाहिए। अगर अभी आप कोई भी प्रकार का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते तो मन शरीर से ज्यादा थक जाता है, और जब मन शरीर से ज्यादा थक जाता है
2: तो
3: फिर उसको नींद भी ज्यादा चाहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बच्चों को उनकी गलती का रियलाइजेशन कराने के लिए हार्श होना जरूरी है क्या?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और किसी की मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं था कि द किड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, लेकिन 17 साल की उम्र में गाड़ी चला रहा था और किसी की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। तो उसके पेरेंट ने उसको डिसाइड किया उसको शील्ड करने के लिए, और उसने गाड़ी छुपा दी, गाड़ी को धुलवा दिया, बच्चे को कहीं और भेज दिया एक्सेट्रा। तो ये गलत है। इस केस में आई अंडरस्टैंड कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इस केसेस में, ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आपको उनको सही मार्गदर्शन देना जरूरी है, वरना वो वही सीखेंगे और आगे भी वही करेंगे।
5: अब ये तो चलो एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन वहीं पर जैसे हम बात कर रहे थे नॉन नेगोशिएबल की, कि वहाँ पर थोड़ा भी, अब जब वो अंडर एज है तो उनको वो चीज देनी नहीं चाहिए, वहीं तो रोकना चाहिए ना। वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई कहता है एक बार ही, समझो कार ही है 16 साल के 15 साल के, आप चला सकते हैं, आप केयरफुली भी चलाएंगे।

0: लेकिन फिर भी वो लॉ के तो अगेंस्ट है ना. अब जो चीज लॉ के अगेंस्ट है वहां आपको ढील नहीं देनी चाहिए.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर श्रेया और विशाल को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नयन लोहार है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं ओवरथिंक करने लगता हूँ और उसके कारण फिर मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। इसे ठीक कैसे करें?
4: ओवरथिंकिंग एक बीमारी है, पर ये कमजोर मन के निशानी है
3: जी।
4: अब चैलेंज तो आएंगे ना लाइफ में। अभी कोई भी छोटा सा चैलेंज है, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, डेडलाइन है, टारगेट है, आपके पास ऑप्शन है, आप किस दिशा में सोचते हैं। तो ओवरथिंक हमेशा क्या होता है, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, या काम को लेकर कैसे होगा, होगा नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। सो आपका मन नेगेटिव सोच रहा है। ओवरथिंकिंग माना आपका मन नेगेटिव सोच रहा है। पहली चीज, अपने मन को समझाएं, चॉइस है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम चाहें तो उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोचने की कोशिश तो करें, अपने आप संकल्पों की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएंगे। और दूसरा, जो हम हमेशा कहते हैं कि जो संकल्प है उसका आधार है जो आप सुनते देखते पढ़ते हैं।
3: तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें, वो अच्छी होनी चाहिए।
4: आप थोड़ा दिन भर में अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करेंगे ना, आपका मन अच्छा सोचना शुरू करेगा। आप किसी दिन देख लिया, जैसे आपने एक अच्छी फिल्म भी देखी है, उसका भी आपके ऊपर एक दिन का इन्फ्लुएंस रहेगा।
3: उसी के बारे में बात करते हैं, वो सोचते हैं ऐसा हुआ तो अच्छी चीजें के बारे में ही आप सोचते हैं।
4: उस दिन वो सोच क्यों चलती है, क्योंकि आपने देखा,
3: देखा
4: आज आपने कोई पेट्रियोटिक फिल्म देखी, आपने अपने देशभक्ति की कोई फिल्म देखी, तो आपके अंदर वो उस प्रकार की सोच चलती है, भावना आती है। पर वो भावना कहाँ से आई?
3: क्योंकि आपका सोच वो था,
4: क्योंकि आपने कुछ देखा। अब हम क्राइम देख रहे हैं, थ्रिलर देख रहे हैं, आजकल तो वीडियो गेम्स के अंदर भी वायलेंस है, वो सब देख रहे हैं। तो जो देखेंगे वो बनते जाएंगे। What you see is what you will become. Your content will create your character. जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप गलत का बंद कर देंगे दरवाजा, सही सुनना शुरू करेंगे और अपने आप ही वो सोच जो है वो बदलने लगेगी।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirch.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कोई कारण से पेरेंट को शायद पता नहीं था, गाड़ी लेके चला गया एक्सेट्रा। अब जब ऐसा किस्सा हो गया तो सबसे पहला पेरेंटल इंस्टिंक्ट आता कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं। कहां बचाऊं ये भी जरूरी है, और कहां सबक सिखाऊं ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो उनको नहीं बचाते तो बहुत लोग बोलते हैं अपने ही बच्चे को नहीं बचा रहे हैं, कैसे बाप है।
4: बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस समय वो अटैचमेंट काम करती है। उस समय डिटैच होना, अपने बच्चे को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाना कि जो भी अब इसकी पनिशमेंट है हम मिल करके उसको फेस करेंगे, इससे भागना नहीं है लेकिन इसको फेस करके इसको क्रॉस करना है, तो वो पेरेंट भी तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना। एक्चुअली अगर वो पेरेंट ही इमोशनली वीक होगा, बच्चा तो देखो डरा हुआ ही होगा, उस बच्चे को स्ट्रेंथ कौन देगा। ये मुझे याद है गांधी जी की ये कहानी हम कई बार सुनते थे। उनका एक दोस्त था जो किसी गलत कार्य में फंस गया, रिश्वत आदि बहुत लेता था, उसके अंदर फंस गया। जब फंस गया और फिर केस बन गया वो चीज, तो उसने गांधी जी को कहा कि आप मेरे लिए लड़ो, मुझे उससे निकालो, पर वो गलत था
3: जब वो बैरिस्टर थे।
4: हाँ, जब वो बैरिस्टर थे, तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं लड़ सकता, यहाँ तो आप गलत हैं। तो उसने, जैसे आप इमोशनल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं कि आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो मुझे इससे निकाल सकते हैं, आप सोचे फिर समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएंगी, मैं वायदा करता हूँ आगे से नहीं करूंगा ऐसे ऐसे उसने भी कहा। गांधी जी ने कहा कि अभी कोई बात नहीं, अभी जिस समय गलत किया था ना, उस समय आपको एम्बैरेस्ड होना चाहिए था, शर्मिंदगा होना चाहिए था, अभी तो हो गया। अब जो इसकी सजा है, उस सजा आपके लिए वो एक काम करेगी अपने को परिवर्तन करने के लिए, ये एक वो मोड बनेगा अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, कर्म करते समय थी। हम शर्मिंदगी कब फेस करते हैं, जब गलत कर लिया,
3: जब सजा की बात आती
4: है, सजा की बात आती है। तो उन्होंने कहा पनिशमेंट कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो तो रियलाइजेशन की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। पर गांधी जी स्ट्रांग थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को भी क्या किया, वो स्ट्रेंथ दी कि नहीं अभी इसको फेस करो, क्योंकि ये कर्म किया है, फिर गलत करेंगे, फिर किसी रूप में लौट करके आएगा। पर हर पेरेंट इतना स्ट्रांग हो और अपने बच्चे को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाए, जरूरी तो वही है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और 7 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है, और कंपनी सिर्फ 2 महीने में डिसीजन क्यों ले लेती है सही या गलत। इस वजह से मैं डीमोरलाइज्ड फील करता हूं और चीजें सेटल नहीं हो पा रही।
3: नहीं, इसमें तो हमें अपने कर्म के ऊपर ही अटेंशन देना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी हमारे साथ अगर अच्छा नहीं हो रहा तो ये तो फिर कुछ पीछे का है जिसके कारण ये अटक पड़ रही है। माना अनजाने में ना हमारे से बहुत भोले हो जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता। ये समझना जरूरी है कर्म कैसे हो रहा है। अगर कहीं पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है जो सबके अंदर है, उसके कारण हमारे से कुछ विकर्म होते जा रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा। वो बीज है, वो किसी न किसी रूप में लौट करके आते हैं। लेकिन आज आपको लगता है आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप में कोई ग्रीड नहीं है, आप बहुत अच्छे से एथिकली होकर के कर रहे हैं, तो इस बीज का रिजल्ट तो आना ही है। प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए।
2: सही बात है। हाँ,
3: आउटकम ने तो आना ही है, पर अभी क्या होता है, हम मेहनत कम करते हैं पर वो फल,
2: फल
3: वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पर ये तो हमारी पूरी गीता का सार ही ये है ना। देखो, ये जो अभी भगवान भी कहता है, महापुरुष भी कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फील किया कि अगर कर्म करते करते कोई फल की इच्छा करता है तो बेचैन होता है, उसको खुशी अनुभव नहीं होती, उसको उसका सुख नहीं मिलता। लेकिन वहां पर कोई बहुत शिद्दत से कर्म करता है और फिर कहते हैं बीज बोया तो उसका फल निकल नहीं है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत ही खुशी से कर्म करना चाहिए और अंदर में फेथ होना चाहिए कि इस कर्म का फल आज नहीं तो कल आना ही है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: नो
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot. मूवीज से हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जरूरी तो है, लेकिन क्या है कि हम जिस देश में है ना, हम बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं, बड़े होते हैं, सीख जाते हैं। जब आप ये कह रही थी, मुझे याद है कि आई थिंक 1980s में एक फिल्म आई थी शक्ति बोल के, आई थिंक दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन पहली बार स्क्रीन में आए थे, और उसमें दिलीप साहब जो है वो अमिताभ बच्चन के बाप होते हैं और वो पुलिस अफसर होते हैं, और जो बच्चन साहब है वो गलत रास्ते पर निकल आते हैं, और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे दिलीप साहब ही कहते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करो, मेरा बेटा है, डजंट मैटर। और उस पर बच्चन साहब बहुत नाराज होते हैं कि यार मेरे बाप हैं फिर भी मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से कहानी लिखी गई है, जिस तरह से इमोशनल मैनिपुलेशन फिल्म हमको करती है, हमको बच्चन साहब के किरदार के लिए ज्यादा फील होता है,
4: कंपैशन
3: होता है कि देखो यार इनके बाप गलत हैं, तो बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन अ एनवायरमेंट जहां बड़े ही होते हैं ये फील करते हुए कि ये गलत कर रहे हैं लेकिन ये सही है क्योंकि ये हीरो हैं फिल्म के और इनके साथ बुरा हो रहा है, हाउ डू यू चेंज दिस परसेप्शन?
4: इसलिए फिल्म को क्राइटेरिया नहीं बनाना होता ना, राइट रॉन्ग के लिए
3: कहीं तो मार्गदर्शन।
4: नहीं नहीं, इसीलिए सी दैट इज व्हाई देयर सो मच रिस्पांसिबिलिटी इवन ऑन द पीपल हु आर मेकिंग फिल्म। क्योंकि देखो एक समय ऐसा होता था, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, एक समय फिल्म्स सोशली करेक्ट हाँ बहुत जरूरी होता था। आप कभी भी नहीं कह सकते कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, क्योंकि पड़ता है, पर तो भी पहले क्या होता था कि जो गलत कर रहा है वो विलन कर रहा होता था, तो आप बाहर निकल करके आते थे, आपको विलन के प्रति थोड़ा सा डिस्गस्ट होता था। हीरो हमेशा पोर्ट्रे किया जाता था जो राइट कर रहा है, एंड द होल फिल्म वुड एंड कि देखो हमेशा सत्य की जीत होती है गलत के ऊपर। नाउ ग्रेजुअली ऐसे भी फिल्म आने लगे हैं जहाँ पर गलत ही हीरो कर रहा है, हीरो ही वायलेंट है, हीरो ही इतना एडिक्शंस के प्रति है, तो वो चीज राइट नहीं है ना। इसलिए आप अपनी फिल्म्स को वो चीज नहीं बनाए ये देखने के लिए कि राइट क्या, हीरो ने किया तो वो राइट है, हीरो ने किया तो वो राइट नहीं है। ना कोई वायलेंस राइट नहीं है, एडिक्शंस राइट नहीं है, इमोशनली मैन्युपुलेट करना राइट नहीं है, इसीलिए सत्संग करना जरूरी है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। क्या करना चाहिए?
3: क्लास 11 के स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को फॉर्मूला के हिसाब से समझाते हैं।
2: हाँ, जरूर।
3: स्ट्रेस साइंस से आता है, फिजिक्स का अक्षर है
2: जी।
3: और स्ट्रेस को क्या कहते हैं? प्रेशर अपॉन एरिया।
2: बिल्कुल।
3: तो प्रेशर उनके लिए है पढ़ाई, प्रेशर उनके लिए है कंपटीशन, प्रेशर उनके लिए है डेडलाइन, लेकिन एरिया है उनके अंदर की आंतरिक शक्ति। तो अगर वो अपनी इनर पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इन चीजों का प्रेशर पड़ने लगता है। आप कहेंगे इतना कंपटीशन है, मेरा कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा। अब उनका मन इस तरह से सोच रहा है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने जीवन में 11th स्टैंडर्ड में है, थोड़ा सा अगर कुछ अपने जीवन में अच्छा सुनना शुरू करें, थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करें, जल्दी उठें, एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग में एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, रात को थोड़ा सा जर्नलिंग करें, कुछ एक अच्छी हॉबी में अपना समय बिताएं, तो ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस क्या है? गलत सोच ही तो रहे है ना। तो मन को अगर थोड़ी श्रेष्ठ दिशा देंगे तो मन अच्छा सोचना शुरू कर देगा।
2: और क्लास 11 में अगर आपने फिक्स कर लिया तो आगे की जिंदगी बहुत आसान से।
3: क्लास 11 तो फिर भी लेट हो गया है। हाँ, सच में।
2: अच्छा।
3: क्लास 11 भी लेट है। जितनी जल्दी कुछ एक चीजों जो हम हमेशा कहते हैं, एक तो बच्चों के अंदर एफर्मेशन प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। एफर्मेशन क्या है? आप बच्चे को राइट सोचना सिखा रहे। कोई सिखाता नहीं है ना, तो बच्चा यही सोचता जाता है मैं कैसे करूंगा। लेकिन अगर उसको आपने ये समझा दिया, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल बी सक्सेसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, गॉड इज माई कंपेनियन, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, आई एम फियरलेस, आई कैन डू इट, तो वो उसकी क्या बन जाती है, जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो उसका चिंतन बन जाता है।
2: बहुत बढ़िया।
3: और वो चीज उसकी स्थिति को श्रेष्ठ बनाती जाती है, एंड दैट्स व्हेन ही इज एबल टू डू समथिंग, उसमें सफल हो पाता है वो। नहीं तो कई बार बहुत टैलेंटेड बच्चे जिनके पास टैलेंट है, जो होशियार भी हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो नर्वस होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पाते।
2: सही बात है।
3: और कई बच्चे एवरेज होते हैं।
2: हाँ, लेकिन क्योंकि वो आराम से रहते हैं, वो
3: सफल हो जाते हैं। वो सफल हो जाते हैं उस चीज के अंदर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रंग रेजा।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my beautiful people. Good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, और लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, जो कि तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के आंटीज या अंकल्स भी तुम्हें नहीं दे सकते. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी मॉर्निंग फील होती है थोड़ी सी कंफ्यूज या फिर जैसे GPS लगाकर भी भटक रहे हो, तो तुम परफेक्ट जगह पर आए हो, बिकॉज यू आर चिलिंग विथ मी ऑन मिर्ची, जहां पर हम ढेर सारी बातें करते हैं ओवर चाय, ब्रेकफास्ट, कॉफी एंड ढेर सारी गपशप करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें जानते हैं. मैं तुम्हें अप टू डेट रखती हूँ और साथ साथ में तुम्हें मिर्चीदार बैंगर्स भी सुनाती हूँ. इससे अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की और क्या हो सकती है. तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर चिपक कर बैठो, जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर और एक्स पर फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: Hello.
3: Hello. Aap hold karna ek second, bhai sahab. Isko vahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthayega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega vahan se. Mat karo usko vahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
2: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: सामान
3: उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
11: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
12: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
13: Chamakte Sitare 2026.
12: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
14: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
15: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
16: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
15: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
17: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
4: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब हम चलने वाले हैं थोड़ी सी जर्नी पर। जर्नी बोले तो टाइम ट्रैवलिंग की होगी। हम सालों पहले पता करेंगे आज के दिन क्या हुआ था। सबसे पहले 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन सल्तन मेहमद द सेकंड, बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट पावर शिफ्ट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। देन 1660 में किंग चार्ल्स द सेकंड marched back to London and said, surprise, मैं वापस आ गया हूँ। Fast forward to 1953, absolute goosebumps moment. Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay became the first humans to conquer Mount Everest. 1968 में India's wrestling legend Dara Singh Ji won the World Wrestling Championship in Mumbai. And this happened way back, WWE became cool in India. Then 1972 में the Dalit Panthers were founded in Mumbai, raising their voices against caste discrimination and inequality. And 1999 में Space Shuttle Discovery docked with the International Space Station for the very first time. Also, आज का दिन है the International Day of UN Peacekeepers. Big love and respect to people serving worldwide. और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे याद दिला दो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चालू है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: 8:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: रेडियो मिर्ची 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Okay, stop scrolling for 2 seconds and listen to this. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए बॉलीवुड का टी.
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट.
1: फिल्ममेकर करण जौहर इज ऑफिशियली अनफॉलोड बेसिकली everybody from Bollywood celebrities on Instagram. Yes, even SRK, Kajol, Alia Bhatt, Kareena Kapoor, everyone. Lekin plot twist ye hai, he still follows PC. Bole to Priyanka Chopra. Hanji. Sirf aur sirf Priyanka ne survive kiya hai is unfollow ki tsunami mein. Honestly, mujhe lagta hai mere relatives ko bhi main itna aggressively filter nahi karti hu jitna ki करण जौहर ने कर दिया. नाउ ऑब्वियसली द इंटरनेट बिकेम एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी ओवरनाइट और पूछा, दया कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ऐसा क्या हो गया है. लेकिन करण जौहर ने क्लियर किया है द एयर फू फू करते हुए और कहा है, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ डिजिटल डिटॉक्स. ही सेड ही इज अनफॉलोइंग एवरीवन टू रिड्यूस टाइम एंड एनर्जी स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑनेस्टली ये काम मुझे भी करना है, लेकिन मुझसे कोई पूछने नहीं वाला कि तुमने क्यों किया है. anyway, तुम पूछ सकते हो, जाकर तुम मुझे फॉलो जरूर कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज का मौसम बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे बाहर के मौसम का हालचाल। अंदर का मौसम तो मिर्चीदार ही है। राइट नाउ इट्स अराउंड 53 डिग्रीज फारेनहाइट एंड आउटसाइड स्काई इज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फीलिंग क्लोजर टू 49 डिग्रीज फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि आज बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स। अगले 24 आवर्स में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है, तो आज के दिन अपने बालों को जिस तरह की मर्जी बनाना चाहो बनाकर बाहर जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नाउ द टेम्परेचर्स टुडे आर रेंजिंग फ्रॉम 52 डिग्रीज फारेनहाइट टू 77 डिग्रीज फारेनहाइट। तो सुबह सुबह यू विल लीव होम ड्रेस लाइक हुडी की तुम्हें जरूरत है, आफ्टरनून आते आते तुम्हें लगेगा यू लैंडेड इन मायामी, एंड इवनिंग आते आते तुम्हें फिर से गजल और शॉल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड द फनी पार्ट टुडे इज कि आज का हाई इज एग्जैक्टली यस्टरडेज हाई, यानी कि 77 अगेन। कल भी इतना ही तापमान था, तो अब अगर बाहर जा रहे हो तो एक लाइट जैकेट कैरी करना, अम्ब्रेला कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन याद से एसपीएफ 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बिल्कुल मत भूलना, और मिर्ची ऑन रखना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heart to beat.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी आ चुकी है मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले एक वायरल वीडियो शोज इंडियन टूरिस्ट डूइंग गरबा नियर एन एयरक्राफ्ट ऑन द वियतनाम एयरपोर्ट टॉमैक। हाँ जी, रनवे पर रास गरबा। नाउ द इंटरनेट इज डिवाइडेड, सम पीपल कॉल्ड इट जॉयफुल एंड फन व्हाइल अदर्स सेड गाइस टाइम एंड प्लेस भी कोई चीज होती है। एंड ऑनेस्टली फेयर पॉइंट। नंबर टू पर Bollywood boys are having a group project meeting. Reports say Salman Khan personally called Ranveer Singh and Farhan Akhtar to sort out the Don 3 situation after rumors around Ranveer's exit. Salman apparently told them creative differences happen all the time. Basically, Salman Khan is playing Modi ji. And number three per cricket fans ke liye. 15-year-old RR opener Vaibhav Suryavanshi reacted after Sachin Tendulkar praised his explosive 97 off just 29 balls in IPL Eliminator. Vaibhav said hearing praises from the god of cricket felt like a huge matter of pride. And honestly, at 15, I was struggling to open math textbook. And this kid is opening bowling attacks. Incredible. Hashtag salute. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect with me Insta or X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Busca bana, busca bana, saca bana.
2: Ya bana.
1: Burga, burga. La vida la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
3: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
4: वही सर, एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात.
4: हाँ सर.
3: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है. सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Lead ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
13: Chamakte Sitare 2026.
12: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मॉर्निंग्स 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM
2: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्यों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर गोल्ड या सिल्वर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो राइट टाइम पर ट्यून इन किया है, बिकॉज वी गॉट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,530, $4,530 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, और पिछले साल आज ही के दिन अराउंड $3,300 गोल्ड ट्रेड कर रहा था। एप्रिसिएशन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स के साथ कनेक्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल कलरलेस डायमंड।

0: प्लेटिनम की रिंग में सेट, 0% इंटरेस्ट, जीरो डाउन पेमेंट के साथ। आज अप्रूव होने पे राज ज्वेल्स की फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाए और 9 किश्तों में पैसे दे बिना किसी इंटरेस्ट के। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, good morning, my lovelies. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings का वो टाइम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. Mirchi, hour got three. सबसे पहले स्पेस न्यूज. समथिंग जस्ट वेंट बूम. लिटरली जेफ बेजोस ओन्ड ब्लू ओरिजिन्स न्यू ग्लेन रॉकेट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग अ टेस्ट इन फ्लोरिडास केप कैनावरल, क्रिएटिंग अ जायंट मशरूम क्लाउड विजिबल फ्रॉम ओवर 74 किलोमीटर्स अवे. इवन इलॉन मस्क रिएक्टेड सेइंग मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रॉकेट्स आर हार्ड. एंड ऑनेस्टली दैट्स प्रोबेबली द कामेस्ट बिलियनेयर रिस्पॉन्स एवर टू समथिंग एक्सप्लोडिंग सो ड्रामेटिकली. And number two per the internet is remembering Harambe, the gorilla who died in 2016 after a child fell into his enclosure at a US zoo. On the 10th anniversary, the White House shared a tribute calling him bigger than a meme. And wow, only the internet can turn a gorilla into both emotional history and pop culture legend at the same time. And number three per Marvel fans, hold your spider webs tight. Tom Holland hinted that he may eventually step away from playing Spider-Man. He said he hopes to guide the next generation the way Robert Downey Jr. helped him, which honestly sounds pretty sweet. But also, sir, some of us are emotionally attached to the version of Spider-Man, okay? And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur saath mein follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name. MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना। शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
10: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
12: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
14: Listener mein back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो पार्ट जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, समथिंग फ्रॉम द पास्ट सडनली मेक्स यू रियलाइज यू बीन स्ट्रेसिंग फॉर नो रीजन. मतलब फुल इतना टेंशन क्यों लिया मोमेंट होने वाला है तुम्हारे साथ. लकी कलर इज टैंजरीन ऑरेंज, लकी नंबर इज 11. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अ लिटिल सीक्रेट में एक्सीडेंटली बिकम पब्लिक टुडे. But relax, nobody is judging you. Honestly, Desi families have suffered worse things than awkward gossips. Lucky color is pistachio green, lucky number is 24. Gemini yani Mithun Rashi, a situation you've been avoiding is finally demanding attention. Face it bravely, because once you handle it, mental peace incoming. Like deleting 8,000 unread emails. Lucky color is electric blue, lucky number is 5. Cancer yani Kark Rashi, you've been doing too much for everyone else lately. Aaj thoda sa khud par bhi attention de do, okay? You're not a 24-hour customer service hotline. Lucky color is off-white, lucky number is 18. Leo yani ki Sihar Rashi, fun vibes are strong today, but don't ignore one serious issue waiting in the corner like leftover guilt from online shopping. Handle it and then party. Lucky color is gold dust, lucky number is 1. Virgo yani Kanya Rashi, stop doom scrolling world problems for 1 second and focus on what genuinely excites you. Protect your peace today like Desis protect Tupperware dabbas. Lucky color is lavender gray, lucky number is 29, and that's your Rashi Zone part 1. पार्ट टू लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर भी हम साथ में हो सकते हैं, फॉलो मी देयर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab... मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: छत छन्नी उस घर मंगनी, ऐसा करके हमारे एक गेम हुआ करता था। मुझे आज तक नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम बचपन में ये गेम खेला करते थे।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Now you tune in with me on मिर्ची। और बचपन में वाकई में इस गेम का मतलब, जो नाम है उसका मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम ये गेम खेला करते थे। हमें रूल्स पता थे, बस हमें तो वही चाहिए था कि चार कोने हैं, चार कोनों के अंदर चार लोग उन कोनों को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक डिनर होता है। डिनर जो है वो अपना एक क्यू बोलता है, उस टाइम पर हम लोगों को अपनी जगहें बदलनी होती हैं, और उसी बीच में ताक झाक करते हुए डिनर को अपनी जगह पकड़ लेनी है, और एक बंदा आउट ऑफ दोस 5 उसको वो कॉर्नर नहीं मिलेगा और वो डिनर बन जाएगा। बस क्या लाइफ, जब आज हम देखते हैं और जांचते पर रखते हैं तो ऐसा समझ में आता है मुझे कि हम बिना किसी चीज को गूगल किए कंफर्म किए करते ही नहीं है। बचपन में न जाने कितने सारे ऐसे काम थे हमारे जो हम बिना सोचे समझे किसी ने कह दिया तो कर दिया, कहीं से सुन लिया तो कर दिया, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, इस तरीके के हुआ करते थे। और हमारे टाइम पर ही मम्मा कहा करती थी कि बेटा, अजनबी अगर कुछ खाने के लिए दें तो लेना नहीं, आज के बच्चों को बताना नहीं पड़ता। इनफैक्ट आज के बच्चों से तो अजनबियों को खतरा है कि अगर कोई बच्चा कुछ दे दे तो लेना नहीं। जमाने बदल गए बाबू भैया, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं जो मिड डे मोहब्बत पर आते हैं और 90s के गियर में गाड़ी को डाल कर कहते हैं यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गाड़ी अब आगे बढ़ाते हुए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक मेरे यारा, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Alo.
3: Alo, usko maa se mat uthao, yaar. Alo.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है?
3: तो मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Hey, goli mar bheje main.
13: Yeah.
12: Ye bheja shor karta hai.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: और डेली बेसिस हम तो कहते हैं क्या हो गया ना अब, लेकिन एक बड़ी मोहब्बत वाली फिल्म आई थी, क्यों हो गया ना
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड ये वो दौर था जब मैं भी विवेक ओबेरॉय की बड़ी फैन हुआ करती थी. एंड मैंने ये फिल्म सिर्फ इसी वजह से देखी थी क्योंकि मैं विवेक ओबेरॉय की फैन थी. तो मैंने कहा कि अच्छा, इफ विवेक इज डेटिंग ऐश्वर्या राय तो मुझे ऐश्वर्या भी मंजूर है, विवेक की पसंद है ना यार. लेकिन आपको पता है कि ये जो फिल्म है इसका टाइटल क्यों हो गया ना प्यार रखने वाले थे, लेकिन फिर जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्हें लगा कि यार ये जो प्यार शब्द है ये बड़ा ओवरयूज्ड है यार हिंदी फिल्मों के अंदर, तो हम ये प्यार व्यार जो मामले हैं ये नहीं रखेंगे, सिर्फ क्यों हो गया ना ये रखेंगे ताकि गेस्ट वर्क जो है वो चालू रहेगा. एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज जब क्यों हो गया ना बोला जाता है तो किस चीज की बात हो रही है. लेकिन ना मैं ये जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जब वो ये कहते हैं कि प्यार इज अ वेरी ओवरयूज्ड वर्ड. आई वुड से कि ओवरयूज्ड है, लेकिन क्या करें, जीवन का सार ही प्यार है ना, अभी इंसान करेगा भी तो क्या करेगा. बट डिड यू नो कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए ना करते रहे, वो भी 10 बार तक, मतलब 10 बार उन्हें अप्रोच किया गया था इस फिल्म में एक रोल के लिए हाँ करने को, और वो ना पे ना बोलते गए. इवेंचुअली उन्होंने हाँ बोली, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, और उन्होंने जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है बोनी कपूर जी, उनसे कहा था कि वो इस फिल्म के लिए हाँ तभी बोलेंगे जब बोनी कपूर अपनी अगली फिल्म रन के लिए अभिषेक बच्चन को कास्ट करेंगे. एंड वी ऑल नो कि रन में तो अभिषेक बच्चन ही थे. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
0: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
1: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
6: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
1: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
6: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: काजल अग्रवाल दी एक्ट्रेस, आज तो बड़ा नाम है यार, खूब शान है इनकी, खूब बातें होती हैं, खूब मीडिया इनको कवर करती है। बट आपको पता है, ये एक फिल्म में थी जो हमने बचपन में देखी है और जिसका टाइटल है क्यों हो गया ना। याद आया क्या?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और वेल, अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटू सा रोल किया था, एंड एट दैट टाइम शी वाज नॉट दी काजल अग्रवाल, शी वाज जस्ट एन एक्टर जिनका नाम था काजल अग्रवाल। और इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय के फ्रेंड का रोल प्ले किया था, एंड ये वो टाइम था जब ऐश्वर्या राय एंड विवेक ओबरॉय का रिलेशनशिप जो था, दैट वॉज एन ओपन सीक्रेट टू द वर्ल्ड। सबको पता था कि ये रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों में से किसी ने तब तक तो एटलीस्ट हामी नहीं भरी थी। लेटर ऑन विवेक ओबरॉय वेंट ऑन बोर्ड, on a lot many interviews, shows, and he spoke about the relationship which eventually broke up. But anyways, at that time jo inka romantic relationship chal raha tha, uski wajah se ye kaha jata hai ki inki on-screen chemistry bhi bahut achhi tarike se nikal kar aayi thi, aur isi ki wajah se inki film ki publicity ko bhi kafi aasani hui thi। दो, इस फिल्म को बनाने के लिए प्रोडक्शन चैलेंजेस काफी हो गए थे, बिकॉज इनिशियली ये जो फिल्म थी, इट वाज सपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूटीवी, लेकिन फिल्म के शुरू होने के 3 हफ्ते पहले ही यूटीवी बैकआउट कर गया, जिसपे विवेक ओबरॉय ने फिर सजेस्ट किया कि क्यों ना बोनी कपूर को अप्रोच किया जाए फॉर दिस फिल्म, सो दैट ही कैन प्रोड्यूस द फिल्म। एंड इवेंचुअली बोनी कपूर डिड प्रोड्यूस द फिल्म। वही कहते हैं कि मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। We'll be right back.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

बट जो उनका नया वाला गाना है इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, ओल्ड women, small town characters, you will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look, unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Navela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8, Adnan Sami ki composition, Adnan Sami की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Josep Milchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burka, burka. La fiesta la burka.
2: Milchi, burka.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Good morning.
4: Sir, I actually asked you about the request for the time. So I saw that you were singing, winging, singing, sir. So, sir, गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना, वो सर थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
4: भेज. वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कोंडा में कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया.
3: सर साहब,
4: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
3: सुन ले बात, मेरी
4: बात
3: सुन, पहले बात सुन.
4: हाँ सर.
3: और बंद करिए, बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा है.
4: सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर.
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mercy Morga, na fét kézzát, only on Mercy. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। दरअसल आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Very larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aapko सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय, हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला। बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना, आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना ना, तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: नौजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

Man Oh Man, Tera Chehra is one of those songs that nostalgia nahi balki ek pura zamana yaad aa jata hai. Adnan Sami ki awaaz mein, that was Tera Chehra on a cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao, and this is where gaane share karne ki baari aati hai. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनेका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: आम सामी के गाने लिपस्टिक में।
1: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7।
2: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबीना।
0: देन मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 6।
3: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर।
0: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
5: Number 1.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहाँ मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी, तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन नहीं काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

ये लेट 40s की बात है जब एक बार लता मंगेशकर जी एक स्टूडियो जा रही थी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता जी ने लोकल ट्रेन ली, उन्होंने देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया, वो टांगा उनके टांगा के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आए, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ, सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं। क्योंकि देखो भैया, हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब, वो अपने भाइयों इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनली बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा और मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपका मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, कहा आप अमेरिका आ जाओ। तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाकर बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी, तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

के साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा, वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चितचोर, इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Purani Jeans. Mirchi.
1: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा। तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
12: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
13: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath. Sirf Mirchi par.

तुमने लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे, अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, ओ यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। व्हाट कॉमेडी, प्लीज डू वॉच। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है एक्ट्रेस नूतन को उनकी मदर जो खुद एक एक्ट्रेस फिल्म मेकर थी शोभना समर्थ जी, उन्होंने अर्ली 50s में जब नूतन जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ही कर रही थी, उनको एक साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस, वो निखार आ जाए। उनकी यंगर सिस्टर तनुजा जी को भी स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन फिनिशिंग स्कूल में नहीं। इनफैक्ट एक्ट्रेस बनने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई वेंट टू रेगुलर इंग्लिश स्कूल क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था और मुझे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाना था। सो दे थॉट दैट इफ आई वेंट टू अ स्कूल इन स्विट्जरलैंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, आई वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू माई लैंग्वेजेस एंड गो इन टू द डिप्लोमेटिक फील्ड एंड आई वॉज गोइंग टू कम बैक एंड डू माई IFS एटसेट्रा एटसेट्रा। डिड नॉट हैपन। And I came back because we had a financial crisis in the family and the only profession that I could think of doing and which my mother thought would be easy for me to do was this and we needed the money so.
0: भाई एज अ चाइल्ड एक्टर तो तनुजा जी ने एक दो फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत एज मेन लीड हुई थी 1961 में विद अ फिल्म कॉल्ड हमारी याद आएगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे, काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे, सुनिए एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे स्टार्ट कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो कर सकेंगे, मैं कहा नकली सांप से तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगी.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश करूँ. मन डोले मेरा, मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
3: हाँ सर.
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mirchi Morga na Vedke Sat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: Radio Mirchi, it's hot.
10: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूरब और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियाँ की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, और उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी और उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जींस पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi, Shivani.
1: Hi.
2: Hi, Shivani. Congratulations. Mubarak ho. Gaadi khareed li.
1: Haan, thank you very much. Aap kaun bol rahe hai?
2: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार।
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले।
2: शिवानी,
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
1: नहीं
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है, और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है। और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। It's hot.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
2: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
3: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Scabana, scabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: Hello.
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को, कुछ ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या कर रहा
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी, दीप खाओ तो जानो।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर,
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Hold the utility companies accountable and auditing waste and fraud.
12: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
13: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi ka.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो, शुक्रवार है भाई और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। नो ह्यूमिडिटी टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डे एंड दे से वीकेंड विल बी आल्सो वेरी नाइस, गुड फॉर होम बायर्स हु वांट टू गो आउट एंड लुक एट प्रॉपर्टीज। एंड टुडे यूएस मार्केट्स राइज एज ट्रंप न्यूज डिसीजन ऑन ईरान ट्रूस। First time home buyers, very important information I want to share in future. If you own a lot of credit cards, use one or two and please don't close them. If you are not using them, just shred them. By closing credit card accounts, you are lowering your credit scores. And also during mortgage process, do not open new credit cards. So friends, buying your dream home, advice is free, pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate is at 6%. 20-year fixed mortgage rate is at 5.875%. 15-year fixed mortgage rate is at 5.5%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Mortgage rates have been relatively stable over the past few weeks. Experts warning that higher borrowing costs are on the way. Millions of homeowners still have an opportunity to chop their housing cost by refinancing, but many of them are making a major miscalculation. So friends, act fast. And don't forget, Lion Mortgage is offering zero closing cost refinance option. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
4: शशि वो मैनहट्टन है।
3: मैन हैटन
5: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
4: टैन मतलब वो धूप की छाप।

सफरनामे की यही कहानी शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर सफर के लिए निकले हो, स्पेशली रोड ट्रिप्स, तो ये चार टाइप के लोग आपको जरूर मिलेंगे। एक होंगे वो जो हमेशा ड्राइव ही करेंगे, अब इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं कि हर बार इनको ही ड्राइवर बनना पड़ता है। दूसरे होते हैं शॉटगन, जो कार के ऑफिशियल डीजे होते हैं। तीसरे होते हैं वो जो यहाँ वहाँ इधर उधर के गॉसिप्स बताते, सबका मनोरंजन करते। और चौथे होते हैं ट्रिप के अन्नदाता। जी हाँ, हर तरह के स्नैक्स लेकर आएंगे और सबके खाने का ख्याल रखेंगे। तो अगर आपकी ट्रिप में भी ये है तो उन्हें ज़रूर बताइए दीप स्नैक्स के बारे में। चाहे बनाना चिप्स हो, पॉपकॉर्न हो या गुजराती स्नैक्स, दीप स्नैक्स होता है हर ट्रिप का साथी। तो आप भी अपनी रोड ट्रिप के लिए दीप स्नैक्स पैक कर लीजिए। गेट दीप स्नैक्स फ्रॉम योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। और ट्रिप पे गाने बजाने हो तो मिर्ची है ना, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar, let's do
1: not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्टब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मजे की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होके भी मूवी में खत्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। जैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाइए.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात.
3: हाँ सर,
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: Sulit ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फैशनेबल फ्राइडे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए शाम तो ढल रही है और जितनी ज्यादा मतलब अभी मई ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और जून शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा गोल्डन आर भी शुरू हो चुका है विथ नन अदर देन आर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का फैशनेबल फ्राइडे के गोल्ड डिकोडर सीरीज में, जहाँ होती है थोड़ी चमक थोड़ी। नमस्ते बॉबी जी एंड वेलकम टू टुडेज शो।
1: हैप्पी फैशनेबल फ्राइडे टू यू सिद्धि जी, एंड दोस्तों आप सबको भी ब्यूटीफुल वार्म इवनिंग। सिद्धि जी, फर्स्ट टू स्टार्ट विद द गोल्ड प्राइस ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली राज ज्वेल्स की टीम के साथ इन्वेस्ट करें। सिद्धि जी, आप तो रोज अवेयर रहती हैं गोल्ड के प्राइस के साथ,
0: बिल्कुल।
1: तो मैं आपके क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ।
0: देखिए बॉबी जी, कल परसों की ही बात है जब थोड़ा सा गोल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में गया था, और जैसे जैसे वीकेंड आना शुरू होता है मुझे तो लगता है शायद खबर फैल जाती है कि अब लोग शॉपिंग करना शुरू करने वाले हैं, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन प्रेजेंट्स के लिए हो, वेडिंग सीजन के लिए हो, या फिर अपनी एनिवर्सरीज। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे बहुत सारे एनिवर्सरीज मई और जून में आते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो शायद खबर फैल जाती है और इसलिए थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पे आज गोल्ड है, राइट?
1: इसलिए बोलते हैं ना, प्यारा सा गाना है, धीरे धीरे बोल कोई सुनता
0: है।
1: तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम तो रोज इतना, मैं और सिद्धि जी दोस्तों के साथ रोज शेयर करते आए हैं, गोल्ड $4,400 का लेवल टच कर, $4,370 का लेवल टच करके वहां पे 4,540 पर ट्राई अउंस आ गया है। सिद्धि जी, जैसे गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड लेता है, देखिए मेमोरेबल मोमेंट्स, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, प्रपोजल रिंग हो, ग्रेजुएशन पार्टी हो, या आने वाली एंगेजमेंट के लिए आप खूबसूरत सा नेकलेस देख रहे हो, तो गोल्ड का प्राइस जो है डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आप अपने डॉलर्स में एक बजट बना के चलते हैं कि अगर मुझे सपोज करिए $5,000 में गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो अगर गोल्ड का प्राइस $130 पर ट्राउंस, $130 पर ग्राम ट्रेड कर रहा था 3 दिन पहले, और आज $134 हो गया है 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस, सो आपके हिस्से में उतने ही डॉलर्स में कम सोना आएगा। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड पर है। अगर पिछले साल से आज के सोने के भाव की कंपैरिजन की जाए तो $3,300 पर ट्राई अउंस आज के दिन गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी परसेंटेज अप्रिसिएशन हुई है, और सिद्धि जी आपकी वो धीरे धीरे कहीं बात कोई सुन ना ले गोल्ड का प्राइस और बढ़ ना जाए, उससे पहले मैं दोस्तों को इन्वाइट करूंगा राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट में आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी आप घर लेके जाए और 9 किश्तों में पैसे दें। कैसे आइए, राज ज्वेल्स आपको रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है एजुकेट करने के लिए तैयार है। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी, और दोस्तों ऐसी ही हमारी बातचीत यहाँ पे हर गोल्डन आवर में जारी रहेगी, तो हर वीक हर दिन आप यहाँ पर इस गोल्डन आवर में आ सकते हो। और आपके भी अगर कोई सवाल है बॉबी जी के लिए तो मुझे जरूर इंस्टा कीजिए @rjmirchisiddhi, और आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: झुमका?
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Namaste, Islam and Sat Sri Akal, bhaiyo aur behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12. A historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
4: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
3: Read for by Sujit Singh for Congress.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: Best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
11: Tera kya hoga Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। आर फेवरेट आहू आहू, क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज्ड बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मजे की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पर फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Scabana, scabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है?
3: तो मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
9: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener MA. बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
14: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो, मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला, उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक महीना, सिर्फ एक महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ एक मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

की टाइम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।